0: कथना कथि न आवै तोट, कथ कथ कथि कोटि कोट कोट।
1: दे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाहे खाहे।

0: गावन साध विचारे,
1: गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे,
0: गावन पंडित पढ़ रखी सरे चुग चुग बेदा नाले,
1: गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मश प्याले,
0: गावन रतन पाए तेरे अठसठ तीरथ नाले,
1: गावे जोध महाबल सूरा गावे खानी चारे,
0: गावे खंड मंडल पर पंडा कर कर रखे तारे,
1: सही तुदनो गावे जो तुद पामन रते तेरे भक्त रसाले,
0: और केते गावन से मैं चितन आवन नाने क्या विचारे,
1: सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई,
0: हैपी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई,
1: रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई,
0: कर कर वेखे कीता अपना जिव दिस दी वडियाई,
1: जो तिस पावे सोई करसी हुक्म न करना जाई,
0: सो पात साहो साहा पात साहिब नानक रहन रजाई,
1: मुंदा संतोख शर्म पचोली ध्यान की करै बिभूत,
0: किंथा काल कुवारी काया जुक्त डंडा।

0: पात नरेंद्र।
1: खेति असुरति शिव के ते नानक अंतना अंत,
0: ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथे नाद विनोद कोट आनंद।
1: शर्म खंड की बाणी रूप, तिथे कारत घड़िया बहुत अनूप।
0: ताकिया गल्ला कथिया न जाए, जे को कहे पिछे पछताए।
1: तिथे घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, तिथे घड़िया।

0: भक्त वसै के लोक करे आनंद सच्चा मन सोए।
1: सचखंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल।
0: जिथै खंड मंडल पर पंड जे को कथै ता अंत न अंत।
1: इथै लो लो आकार जीव जीव हुकम तिवै तिवकार।
0: वेखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार।
1: जत पहारा तीरज सुनियार आहरण मत वेद हथियार।
0: खला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत टाल। कड़िए शब्द सची

0: सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे
1: अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने
0: नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने
1: नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे
0: अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ती बैपुते
1: कलंकन बैनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज ऋजेश्वरंग परम रूपे
0: नमो जोग जगेश्वरम परम सिद्धे नमो राज ऋजेश्वरम परम विद्धे
1: नमो शस्त्र पाणे नमो वस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता
0: अपेक्षी अपरमी अपोगी अपोक्ते नमो जोग जगेश्वरम परम जुक्ते
1: नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सधर्मे
0: नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो शाह शाहंग नमो पुपे
1: नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग शनाने
0: नमो मंत्रंग मंत्रंग नमो जंत्रंग जंत्रंग नमो इष्टे इष्टे नमो तंत्रंग तंत्रंग
1: सदा सचदान अनुसर्वंग परनासी अनुपे रूपे समस्तुल निवासी
0: सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध कर्ता अधो उर्धर धंग अगंग उंग हर्ता
1: परम परम परमेश्वरंग पोष पालंग सदा सर्वदा सिद्धाता दयालंग
0: अशेतीय पेतीय नामंग कामंग समस्तो पराजी समस्त

0: धार मूरत जो नाद शेख
1: देशर न पेश जाकर रूपरेख न राग
0: तत्त दिशा विषया हुए फैलियोन राग
1: नाम कान विहीन पेख तम हु न जाए
0: सर्व मान सर्वतर मान सदय मानताए
1: एक मूर्तन एक दर्शन कीन रूप अनेक
0: खेल खेला खेल खेलन अंत को फिर एक
1: दे पेव न जा नहीं जे वेद और कते
0: रूप रंग न जात पासो।

0: गर्भगंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम
1: अपरूपम एक अनुस्तुति पुरुष अवधूत
0: गर्भगंजन सर पंजन आदि रूप सूत
1: अंगी न भंग नात्मिक पुरुष अपार
0: सर्व लायक सर्व कायिक सर्व को प्रित पार
1: सर्वगंता सर्वहंता सर्व ते अनपेख
0: सर्व शास्त्र न जानिए जय रूप रंग रेख
1: परम वेद प्राण जाके नित भक्त नित
0: सिमृत प्राण शास्त्र न आप ये बोचित मद पार संत वै प्रसाद
1: गुणगन उदार महिमा अपार आसन भंग उपमान अंग
0: अनुभव प्रकाश निस्तिन नाश आ जान

0: चतुर चक्र कर्ता चतुर चक्र हर्ता चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने
1: चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र परती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले
0: चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र माने चतुर चक्र दाने ना सत्रे ना मित्रे ना परमंग ना पित्रे ना चित्रे ना मित्रे परे है पवित्र आशीष देसे गया बज पेसे गया गंज करमे गया बज भरमे
1: के अब दूत वरने के बहुत करने
0: के राजंग प्रभा है की धर्मंग तुझा है के अशोक वर्ण है के सर्वा वर्ण
1: के जतन कीर्ति है के शतरंग क्षत्रि है के

0: रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है
1: के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है
0: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे
1: के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो
0: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है
1: के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी
0: के सर्वत्र काजे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है
1: के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है
0: के सर्वत्र मानी है सदैव अंग प्रधानी है के सर्वत्र जापी है के सर्वत्र थापी है
1: के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मन है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है
0: के सर्वं कली में के परमं पही में के आकल अलामे के साहिब कलामे
1: के उसनल वजू है तमाम अमल रजू है मे सुलसलाम है सलीकत मुदाम है
0: कनीमल शिखस्ते गरीबल परस्ते बलंदल मकाने जमीनल जमाने
1: कमीजल तमाम है रजूल निदान हरीफुल अजी मैं रजायक यकीन है
0: अनेकल तरंग है अपेद है अपंग है अजीजल निवाज है गनीमल खराज है
1: निरुक्त स्वरूप है त्रमुक्त विभूत है प्रयुक्त प्रभा है सजुक्त सदा
0: है सदैवंग स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्व साज है
1: समस्तो सलाम है सदैव काम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है
0: ओगाध रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे
1: त्रभंग त्रिपादे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सो सर्वा अनुरागे
0: मुक्त स्वरूप है अछिज है अछूत है के नरकन पर नाश है पृथ्वील पर वास है
1: निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है
0: निरुक्त सदा है।

0: सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं
1: सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता
0: सावल शांतवाय प्रसाद
1: नमो नरकनाशे सदैव प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अभंगं विभूते
0: परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते
1: अनंगी अनामे द्रवंगी द्रकामे नरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे
0: न पुत्रे न सत्रे न

0: भंजन है अरगंजन है रे प्रतापन है जप जापन है
1: अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है अर्ता हर है
0: परमात्म है सर्वात्म है आत्म बसे जसे जसे पुचंग प्रयात छंद
1: नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज।

0: नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजल नामे समस्तल निवासे
1: कामंग बैपुते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सदर्मंग बैपुते
0: सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी करिमल कलिंदा समस्तल निवासी चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भुगते
1: स्वयंभव स्वांग सर्वदा।

0: सकल प्रजाजन आप सवारी
1: शिव कन को शिव गुण सुख दियो सतरन को फल मोहद कियो
0: कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत
1: ते कुंचर सूला सब पर कृपा।

0: मन चंचला चतुराई किने ना पाया।
1: चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरे
0: ए माया मोनी जिने इत परम पलाया।
1: माया

0: पवित्र माता पिता कुटुंब सहित सियो पवित्र संगत सवाइया।
1: कह दे पवित्र सुन दे पवित्र से पवित्र निन्नी मन वसाया।
0: कहे नानक से पवित्र जिनी गुरमुख हर हर ध्याया।
1: करमी सहज न उपजे बिन सहजे सहसा न जाए।
0: ना जाए सहसा किते संजम कहे कर्म कमाए।
1: सहसे जियो मलीन है कित संजम धोता जाए।
0: मन तो बो शब्द लागो हरस्यो रहो चित लाए।
1: कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजे ए सहसा इव जाए।
0: जियो मैले बारो निर्मल जियो त मैले तिनी जन्म जुए हारिया।
1: हितसना वड्डा रोग लग्गा मरण मनो विसारिया।
0: बेदा में नाम उत्तम सो सुने नाही फिरे जियो बेतालिया।
1: कहे नानक जिन सच तज्जिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया।
0: जियो निर्मल बारो निर्मल बारो त निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमानी।
1: कूड़ की सोई पहुंचे नाही मनसा सच सुमानी।
0: जन्म रतन जिने खटिया पल्ले।

0: रसना तुमन रस गाज रही तेरी प्यास न जाए।
1: प्यास न जाए हो कि तैज च हरस पल्ले न पाए।
0: हरस पाए पल्ले पिए हरस बौ न तृष्णा लागे आए।
1: एहो हरस कर्मी पाई सात गुरु मलया जस आए।
0: कहे नानक होर अनरस विसरे जा हर बसे मन आए।
1: हे श्री रा मेरे आ हर तू मैं ज्योत रखी ता तू जग में आया।

तिस हब्बो किश सुहंदा, जन नानक धन सुहागण साई, जिस संग पतार वसंदा, यार वे नित सुख सुखेंदी।

हरण हाराय अवर्ण सूझ सिबी जी कारा गुरमुख सच वसै कटे अंतर सहजे सच समाई हे सबना सच वसै मन माही गुर प्रसादी सहज समाही गुर गुर करत सदा सुख पाया गुर चरणी चित लाई हे सतगुर है ज्ञान सतगुर है पूजा सतगुर सेवी अवरना दूजा सतगुर ते नाम रतन धन पाया सतगुर की सेवा पाई हे बिन सतगुर जो दूजे लागे आवै जाहे ब्रह्म रहै अपागे नानक तिन की फिर गत होवै जी गुरमुख रहै शरणाई हे गुरमुख प्रीत सदा है साची सतगुर ते मांगो नाम आ जाच

तिस्यों किछ ना कहिए अजाने, मूर्ख स्यों ने लूज पराणी, हर जपिए पद निर्वाणी। ना कर चिंत चिंता है करते, हर देवे जल तल जनता सब तय। अचिंत दान दे प्रभ मेरा, विच पाथर कीट पखाणी। ना कर आस मीत सुत पाई, ना कर आस किसै शाह व्यवहार की पराई। बिन हर नावै को बेली नाही, हर जपिए सारंग पाणी। हे अनदिन नाम जपो बनवारी, सब आसा मनसा पूरै।

जो शरण परै तिस की पत राखै, जाय पुछो हो वेद पुराणी, जिस हर सेवा लाए सोई जन लागै, गुर कै शब्द भरम पौ भागै, विच्चे गृह सदा रहै उदासी, ज्यों कमल रहै विच पाणी।

हर मेरे मन पाणी हे। हों क्या गुण तेरे आखा स्वामी, तू सर्ब जिया का अंतर जामी। हों मांगो दान तुझे पै करते, हर अणदन ना बखाणी हे। कैसी जोर अहंकार बोलन का,

सब सहज अंत लोवै। तोट न आवै पूर भंडारै तृप्त रहे आगी जाहे। जाचै सिद्ध साधक बनवासी जाचै जति सती सुखवासी। एक दा तार सगल है जाचक देह दान सृष्टि जाय। करें भगत वर रंग पारा खिन में तापू तापनारा। पारू तोल बेअंत स्वामी हुकम मन भगती जाहि। जिस दे दर्श सोई तुद जाने ओ गुर कै शब्द सदा रंग माण। चतर स्वरूप से आना सोई जो मन तेरे भावी जाय। जिस चीत आवै सो वे प्रवाह जिस चीत आवै सो साचा शाह। जिस चीत आवै तिस पौ के हा अवर कहाँ किछ की जाय। तृष्णा बूझी अंतर ठंडा गुरपूरै लै टूटा गंडा। सुरत शब्द दे अंतर जागी अम्यो चोल चोल की जाय।

गुर सेवक को बिघ्न न भगती हर पूर दृढ़ाया ज्ञान आए गुर दृष्टाया सबनी ठाई जल थल पूरह या गोसाई ऊंच ऊन सब एक समाना मन लागा सहज ध्यान आए गुर मिलया सब तृष्ण बुझाई गुर मिलया नह जो है जा माई सत संतोख दिया

चरण तोए सुख पाई ना। बहुत द्वारे भ्रम भ्रम आया, तुमरी कृपा दे तुम शरणाय। सदा सदा संतै संग राखो हो, नाम दान देवाई नाम। पय कृपाल गुसाई मेरे, दर्शन पाया सतगुर पूरे। सुख सहज सदा आनंदा, नानक दास दसाई ना मारू। सोलहे महला पंजवां, इको अंकार सतगुर प्रसाद। सिमरै धरती अर आकाशा, सिमरै चंद सूरज गुण तासा। पौन पानी बै संतर सिमरै, सिमरै सगल उपार जना। सिमरै खंड दीप सब लोवा, सिमरै पाताल पुरिया सच सोवा। सिमरै खाणी सिमरै बाणी, सिमरै सगले हर जना। सिमरै ब्रह्मे विष्णु महेशा, सिमरै देव ते कोट ते तीसा। सिमरै जख दैन सब सिमरै, अगणत न जाई जस गनाव। सिमरै पस पंखी सब भूता, सिमरै बन पर्वत अवतूता। लता बली साख सब सिमरै, रब रहया स्वामी सब मनाव। सिमरै थू सूखम सब जनता, सिमरै संसाध कर मंता। गोपत प्रगट सिमरै प्रभ मेरे, सगल भवन का प्रभ तनाम। सिमरै नर नारी या शर्मा, सिमरै जात जोत सब वरना। सिमरै गुणी चतर सब बेते, सिमरै रैणी अर दिना। सिमरै घड़ी मूर्त पल निमखा, सिमरै काल अकाल सच सोचा। सिमरै सौन शास्त्र संजोगा, लाख नाउ लखिए कखेना। करण कराव नहार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी। कर कृपा जिस भगति लाभ हो, जन्म पदार्थ सो जिना। जाकै मन बूठा प्रभ अपना, पूरै कर्म गुर का जप जपना। सर्व निरंतर सो प्रभ जाता, बहुण न जोनी परम रुणा। गुर का शब्द वसै मन जाकै, दुख दर्द प्रमता का भागै। सुख सहज आनंद नाम रासु, अनहद बाणी सहज थुना। सो तनवंता जन प्रभ त्याया, सो पतवंता जन साध संग पाया। पार ब्रह्म जाकै मन गुठा, सो पूर करमा नाशना। जल थल महियल स्वामी सोई, अवरण कहियै दूजा कोई। गुर ज्ञान अंजन काट्यो भ्रम सगला, अवरण दिसै एक बिना। ऊचे ते ऊचा दरबारा, कहण न जाई अंत ना पारा। गैर गंभीर अथा स्वामी, अतोल न जाई क्या मिना। तू करता तेरा सब किया, तुझ बिन अवरण कोई बिया। आद मद अंत प्रभ तू है, सगल पसारा तुम तना। जमदूत सनिकट न आवै, साध संग हर कीर्तन गावै। सगल मनोरथ ताके पूरण, जो श्रवणी प्रभ का जस सुनाव। तू सबना का सबको तेरा, साचे साहेब गैर गंभीरा। कहो नानक से जानी उत्तम, जो पावै स्वामी तुम मना। मारू महला पंजवा। प्रभ समरथ सर्व सुख दाना, सिमरो नाम हो मेहरबाना। हर दाता जी जंत पिखारी, जन बांचै जा चंगना। मांगो जन तूर परम गत पावो, जन्म जन्म की मैल मिटाव। दीर्घ रोग मिटै हर औखद, हर निर्मल रापै मंगना। श्रवणी सुनो बिमल जा स्वामी, एकायो तजो बेकामी। निव ने पाए लगो दास तेरे, कर सोकृत नाही संगना। रसना गुण गावे हर तेरे, मिटै कमाते अवगुण मेरे। सिमर सिमर स्वामी मन जीवै, पंच दूत ताज तंगना। चरण कमल जा बोहित चरिय, संत संग मिल सागर तरिय। अर्चा बंदन हर समत, निवासी बहुड जोनना नंगना। दास दासन को कर लेहो गोपाला, कृपा निधान दीन दयाला। सखा सहाई पूर्ण परमेश्वर, मिल कदे न होवी भंगना। मन तन अर्प तरी हर आगै, जन्म जन्म का सोया जागै। जिसका सा सोई प्रत पालक, हत्यागी हो मैं हंत ना। जल थल पूर्ण अंतर जामी, कट कट रव्या शल स्वामी। परम पीत खोई गुरपूरै, एक रव्या सरबंग नव। जात कत पेखों प्रभ सुख सागर, हर तोट भंडार नाही रतनागर।
ਅਗੇ ਅਗਾਖ ਸਮਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਐ ਸੋ ਬੂਝੈ ਜੈਸ ਕਿਰ ਪੰਗਨਾ। ਛਾਤੀ ਸੀਤਲ ਮਨ ਤਰਨ ਠੰਡਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਮਿਟਵੀ ਡੰਜਾ। ਕਰ ਗਏ ਕਾਢ ਲੀਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੈ, ਅਮਿਓ ਤਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੰਗਣਾ। ਏਕੋ ਇਕ ਰਵਿਆ ਸਭ ਠਾਈ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਇ। ਆਦ ਮਤ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਰਵਿਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੁਝੀ ਭਾਰ ਮੰਗਣਾ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਸਦ ਬਖਸ਼ੰਦ, ਗੁਰ ਜਪ ਜਾਪ ਜਪਤ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਗਿਆਨ ਦੀਪਕ ਸੰਤ ਸੰਗਨਾ। ਜੋ ਪੇਖਾ ਸੋ ਸਭ ਕੇ ਸੁਆਮੀ, ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣ, ਜੋ ਕੀਨੋ ਸੋ ਤੁਮੈ ਕਰਾਇਓ, ਸ਼ਬ ਸਹਾਈ ਸੰਤੈ ਤਨਾਵ। ਜਾਚਕ ਜਾਚੈ ਤੁਮੈ ਅਰਾਧੈ, ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧੈ। ਏਕੋ ਦਾਨ ਸਰਬਦ ਸੁਖ ਗੁਣ, ਨਿਧ ਆਨ ਮੰਗਣ ਨੇ ਕਿੰਚ ਨਾਵ। ਕਾਇਆ ਪਾਤਰ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ, ਲੱਗੀ ਲਾਗ ਸੰਤ ਸੰਗਾਰਾ। ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਬਣੀ ਹਰ ਬਾਣੀ, ਮਨ ਨਾਮ ਜੀਠੈ ਰੰਗਣਾ। ਸੋ ਲੈ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲਿਆ, ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਹੋਏ ਠਾਕੁਰ ਚੜਿਆ। ਆਨੰਦ ਵਿਨੋਦ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਖ ਨਾਨਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਸ।

जमदूतरह माया हो कृपाल की इच्छा कर रखो साधु संतन के संग संगा दृष्टमण है सगल मथे ना एक मांगो दान गोविंद संतरे ना।

कृपा करी जो सुखदाते तिन साधु चरण हृदय पराते सगल नाम निधान तिन पाए अणद शब्द मन वा जंग कीर्तम नाम कथ तेरे जेब सत नाम तेरा परा फुरबला कहो नानक भगत पै सरनाई देह दर्श मन रंग लगा तेरी गतम तू है जाने तू आपे कथा तया वखाने नानक दास दासन को करियो हर भावै दासा राख संगा मारू महला पंजवा अल्लाह अगम खुदाई बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के धंधे होए पै खाक फकीर मुसाफर एह दरवेश कबूल दरा सच निवाज यकीन मुसला मनसा मार निवारो आसा दे मसीत मन मौलाना कलम खुदाई पा खरा सरा शरीयत लेख मावो त्रिकत तर्क खोज टोलावो मारफत मन मारो अबदाला मिलो हकीकत जित फिर ना मरा कुरान कतेब दिल माय न्यो कमाही दासो रात रखो बदराय पंच मर्द सदक लै बादो खैर सबूरी कबूलता परा मक्का मेहर रोजा पै खाका पिस्त पीर लफ जा कमाए अंदाजा हूर नूर मुसकुदाया बंदगी अलह आला हुजरा सच कमावे सोई हाका जी जो दिल सोदै सोई हाजी सो मुला मलऊन निवारे सो दरवेश जिस शिव तरा सबे वक्त सबे कर मेला वेला खालक याद दिल मैं मौला तस्बी याद करो दस मर्दन सुन्नत सील विधान बरा दिल मैं जानो सा फिलहाला दिल खिलखाना बिरादर हमू जंजाला

हासुम हाथ हमारे कछुए नाही, जिस जनाए तिसे जनावना, जाके मस्तक तुरड़ पाए आ, तिस ही प्रखण व्यापे माय। नानक दास

चिन्ह ताकि कीमत कह न जाय जत कतो ही समान समावना सोई भगत सोई वरदाता सोई पूर्ण पुरख विदाता बाल सहाई सोई मेरा जो तेरे मन भावना किरत दो मृत दुख सुख लिख पाए तिल नहीं पता कटना कटाए सोई होए जेव करते भावे कह के आवन जावना अंधकूप ते सोई काढ़े जन्म जन्म के टूटे गाढ़े।

कह न जाय आचरज रूप वडी वडियाई भगत दान मंगे जन तेरा नानक बल बल जावना मारू वार महला तीजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सलोक महला पहला विन गाहक गुण विचै तो गुण सहगो जाय गुण का गाहक जय मिले तो गुण लाख विकाए है गुण ते गुण मिल पाई है जय सतगुरु माए समाए है अमोल अमोल न पाई है वणजनली जय हाट नानक पूरा तोल कै कौन होवे घाट महला चौथा नाम विहुने परम सै आवै जावै नीत एक बंद एक टीलिया एक सुखी एक प्री एक सुखी हर प्रीत नानक सच्चा मन लै सच करनी सच रीत पौड़ी गुरते ज्ञान पाया त खड़ करारा दूजा भ्रमगड़ कटिया लोह मोह वकंकारा हर का नाम वसया गुरु शब्द विचारा सत संजम सह मत उत्तमा हर लगा प्यारा सब सचो सच वर्तदा सस जनहार सलोक महला तीजा के दारा रागा भी जानी पाई शब्द करे प्यार सतसंगत सो मिल दौर सच्चे करे प्यार विचो मल कटे अपने कुलंक करे उधार गुणा की रास संग्रह अवगुण कड़े विकार अवगुण कड़े विडार नानक मिलिया सो जानिए जो गुरु ना छोड़े अपना दूजे ने तरे प्यार महला चौथा सागर देखो डर जा डर मरो पै तेरे डरना है गुर कै शब्द संतोखिया नानक बिकसा नाए महला चौथा चल बोते चल सो सागर डैरी थे ठाकण सचे निब बहुल थे जे गुरु तीरक दे ते दर्जा उतारी है गुरु दिसे सावधान नानक नदरी पाई है दरगे चले मान पौड़े नह कंटक राज पुंज तू गुरमुख सच कमाई सच्चे तख्त बैठा न्याओ कर सतसंगत मिले मेल मिलाए सच्चा उपदेश हर जापना हर शुभ बने आए ऐथे सुखदाता मन वसंत होय सखाई हर शुभ प्रीत उपजी गुर सोजी पाए श्लोक महला पहला भुली भुली मैं फिरा पादर कहे न कोय पूछो जाय सियाणिया दुख का दुख काटे में रखोए सतगुरु साचा मन वसे साधनो थी ठाए नानक मंत्र उतासी है सिफती सचे नाए महला दी आपे करनी कार आपे करे रजाए आपे किसी बख्श ले आपे कार कमाए नानक चानन गुरु मिले दुख विख जाली नाए पौड़ी माया वेख न भुल तू मन मुख मूर्खा चलदिया नाल न चले सब झूठ दर्ब लखा अज्ञानी अंध बन बूझे सिर ऊपर जम खड़ गए कलख गुर प्रसादी उपर जिन हरस चखा

0: अन्नमें अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो
1: काल कड़ी स्तन माए मठावो
0: सिमरो जास बिसंबर एक
1: नाम जपत गंत नीके
0: जीत प्राण सिमरत सुधाखर
1: किन्ने राम नाम एक अखर
0: किनका इक चित दी बसावे
1: ताकी महिमा गनी न आवे
0: ताकी एक दर्श तुहारो
1: नानक संग मोए धारो
0: सुखम नी सुखम रत प्रभ नाम
1: भक्त जन के मन विश्राम रहाओ
0: प्रभ के सिमरन गर्व न बसे
1: प्रभ के सिमरन दुख जम नासे
0: प्रभ के सिमरन काल पर हरे
1: प्रभ के सिमरन दुश्मन डरे
0: प्रभ सिमरत कस बिघन न लागे
1: प्रभ के सिमरन आंधन जागे
0: प्रभ के सिमरन पौ न व्यापे
1: प्रभ के सिमरन दुख न संतापे
0: प्रभ का सिमरन साध के संग
1: सर्व नान नानक हर रंग
0: प्रभ के सिमरन हृदय सिद्ध नौ निध
1: प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्व बुद्ध
0: प्रभ के सिमरन जप तप पूजा
1: प्रभ के सिमरन बिन से दूजा
0: प्रभ के सिमरन तीर्थ स्नानी
2: प्रभ के सिमरन दरगे मानी
0: प्रभ के सिमरन होए सो पला
2: प्रभ के सिमर सफल फला
0: से सिमरे धन्य आप सिमराए
2: नानक ताके लागो पाए
0: प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा
2: प्रभ के सिमरन उदरे मूचा
0: प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझे
2: प्रभ के सिमरन सबके सुजे
0: प्रभ के सिमरन नाही जम त्रासा
2: प्रभ के सिमरन पूर्ण आसा
0: प्रभ के सिमरन मन की मल जाए
2: अमृत नामृत माए समाए
0: प्रभ ती बसे साध की रसना
2: नानक जन का दासन दसना
0: प्रभ को सिमरे से तनवंते
2: प्रभ को सिमरे से पतवंते
0: प्रभ को सिमरे से जन परवान
2: प्रभ को सिमरे से पुरख प्रधान
0: प्रभ को सिमरे से बेमोहताजे
2: प्रभ को सिमरे से सर्व के राजे
0: प्रभ को सिमरे से सुखवासी
2: प्रभ को सिमरे सदा विनाशी
0: सिमरन ते लागे जिन आप दयाला
2: नानक जन की मंगेरे वाला
0: प्रभ को सिमरे से पर उपकारी
2: प्रभ को सिमरे तिन सद बलिहारी
0: प्रभ को सिमरे से मुख सुहावे
2: प्रभ को सिमरे तिन सुख विहावे
0: प्रभ को सिमरे तिन आत्म जीता
2: प्रभ को सिमरे तिन मरीता
0: प्रभ को सिमरे तिन अंध कनेरे
2: प्रभ को सिमरे बसे हनेरे
0: संत कृपा ते अंधन जाग
2: नानक सिमरन पूरे भाग
0: प्रभ के सिमरन कार्ज पूरे
2: प्रभ के सिमरन कबू न चूरे
0: प्रभ के सिमरन हर गुण बानी
2: प्रभ के सिमरन सह समानी
0: प्रभ के सिमरन निश्चल आसन
2: प्रभ के सिमरन कमल विगासन
0: प्रभ के सिमरन अनहर चुनकार
2: सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार
0: सिमरे से जन जिनको प्रभ माया
2: नानक तिन जन सानी पिया
0: हर सिमरन कर पग प्रटाए
2: हर सिमरन वेदो पाए
0: हर सिमरन पै सिद्ध जति दाते
2: हर सिमरन नीचो कौन जाते
0: हर सिमरन तारी सब तरना
2: सिमर सिमर हा कारण करना
0: हर सिमरन क्यों सगल अकारा
2: हर सिमर में आप निरंकारा
0: हर कृपा दिस आप बुधाया
2: नानक गुरमुख हर

0: हर के नाम जान को त्रिवत भोगत
1: हर का नाम जन का रूप रंग
0: हर नाम जपत का पर न पंग
1: हर का नाम जन की बडियाई
0: हर के नाम जन शोभा पाई
1: हर का नाम जन को भोग जोग
0: हर नाम जपत का सुन
1: जन राता हर नाम की सेवा
0: नानक पूजे हर हर देवा
1: हर हर जन के मालिक जीना
0: हर तन जन को आप्रभ दीना
1: हर हर जन के ओठ सतानी
0: हर प्रताप जन अवर न जानी
1: ओत पोत जन हर रस राते
0: सुन समाध नाम रस माते
1: आठ पहर जन हर हर जपे
0: हर का भगत प्रश्न छपे
1: हर की भगत मुक्त भो करे
0: नानक जन संके ते तरे
1: हर जाते हो हर को नाम
0: नाम तेन हर हर गुण गाम
1: सब ते उत्तम हर की कथा
0: नाम संत दा दुख लथा
1: नाम की महिमा संत रिद बस है
0: संत प्रताप दुर्त सब नस है
1: संत का संग बड़ पागी पाई है
0: संत की से

0: तप ज्ञान सब त्यान
1: शास्त्र सिमृत बख्यान
0: योग व्यास कर्म त्रम क्रिया
1: सकल त्याग बन मदे फिरिया
0: अनेक प्रकार किए बो जतना
1: उन दान हो में बो रतना
0: वीर कटाए होम में कर रती
1: वर्त नेम करे वो पाती
0: नहीं तोल राम नाम विचार
1: नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार
0: खंड पृथ्वी फिरे थिर जीवे
1: महाउदास पिपिसर थीवे
0: अगन माहे होमत परान
1: अंकाश्व है भरपूर दान
0: योली कर्म करे बो आसन
1: ज्ञान मार संयम सातन
0: निमक निम कर शरीर कटावे
1: कोपी होमे मैल न जावे
0: हर के नाम सम सर कछ नाहीं
1: नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे
0: मन काम ना तीर्थ दे छुट्टे।

0: स्वामी
1: के अंतर जमी
0: अपनी गत मित जानो आपे
1: अपन संगा परव्राते
0: उमरी उस्त तुम ते होए
1: नानक अवर न जान सकोए
0: सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म
1: हर को नाम जप निर्मल कर
0: सगल क्रिया में उत्तम क्रिया
1: सा संग दुर्मत मल हिरिया
0: सगल उद्दम में उद्दम पला
1: हर का नाम जपो जी सदा
0: सगल वाणी में अमृत वाणी
1: हर को जसो रसन बखानी।

0: जय सद नमस्कार।
1: जाके मन लागा प्रमिठा
0: सर्व सुख ताउ मन बूठा
1: जन अपना हुकम नाया
0: सर्व भोग नानक तिन पाया
1: अगंत साहो अपनी देरास
0: खास बीत बाते आंदोलास
1: अपनी अमान कछ बहर साले
0: अज्ञानी मन रोस करे
1: अपनी प्रतीत आप ही खोवे
0: उसका विश्वास न होवे
1: जिसकी बस्तिस आगे रखे
0: रागी आज्ञा माने माथे
1: उसते चौगन करे निहाल
0: नानक साहेब सदा दयाल
1: अनिक पांत माया के हेत
0: सर्वत जान नेत
1: की छाया सिओ रंग लावे
0: ओ बिन से ओ मन पुछतावे
1: जो दिसे सो चालन हार
0: लपट रे होते अंधंधार
1: ताऊ से ओ जो लावे ने
0: ताको हाथ न आवे के
1: मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई
0: कर कृपा नानक आप ले लाई
1: मिथ्या तन तन कटम्ब सवाया।

0: विकार को तावे
1: मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है
0: मिथ्या तन्नी पर उपकार
1: मिथ्या वासने इति विकार
0: बिन बुझे मिथ्या सब पे
1: सफल देह नानक हर हर नाम लय
0: व्यर्थि साकत की आरजा
1: साच बिना कहो सुचा
0: व्यर्था नाम बिना तन अंध
1: मुखावता कह दुर्गंध
0: बिन सिमरन दिन नयन वृथा बिहाये
1: मेघ बिना जो खेती जाए
0: गोविंद भजन बिन वृथे सब काम
1: यो कृपा के निराथ धाम
0: अन्न तन ते

0: सत्य अमृत खाए
1: जी ठाकुर को रखवन माहे
0: प्रसाद सुगंध तन लावे
1: जिसको सिमरत परम गत पाव है
0: प्रसाद बसे सुख मंदर
1: जिसे त्याए सदा मन अंदर
0: प्रसाद ग्रह संग सुख बसना
1: आठ पै सिमरो तिस रसना
0: प्रसाद रंग रस भोग
1: नानक सदा त्याये त्या बन जोग
0: प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे
1: जिसे त्या कत अवल भाव है
0: प्रसाद सुख से सोई जाए
1: मन आठ पै ताकाश जस गावी जय
0: प्रसाद तू सबको माने
1: मुखता को जस रसन बखाने।

0: प्रसाद तेरे सगल सिद्ध रटा के
1: मन सा निपा ठाक प्रवता के
0: जे प्रसाद तुझको न पहुँचे
1: मन सा सा सिमरो प्रभु उचे
0: जे प्रसाद पाई दर लभ दे
1: नानक ताकी भगत करे
0: जे प्रसाद भूखन पहरी दे
1: मन से सिमरत को आल सकी
0: जे प्रसाद असभ हस्त सवारी
1: मन से प्रभु को कबू ना बिसारी
0: जे प्रसाद भाग मिल कतना
1: राख प्रोय ब्रह्म अपने मना
0: जिन तेरी मन बंत बनाई
1: नानक तेरी रखे
0: जे प्रसाद करे पुन
1: बोदान का तिसका ध्यान
0: प्रसाद तू आचार व्यवहारी
1: को।

0: बोले अमृत रसना
1: ये प्रसाद सहजे बसना
0: ये प्रसाद हस्त कर चले
1: ये प्रसाद संपूर्ण फल है
0: ये प्रसाद परम गत पावे
1: ये प्रसाद सुख सह समावे
0: ऐसा प्रभु त्याग बरकत लागो
1: प्रसाद नानक।

0: साध के संग मुख उज्जवल होत,
1: साध समर सगली खोत,
0: साध के संग मिटे अभिमान,
1: साध के संग परसो ज्ञान,
0: साध के संग बुद्धे प्रभ नेरा,
1: साध संग सब होतन बेरा,
0: साध के संग पाए नाम रतन,
1: साध के संग एक ऊपर जतन,
0: साध की महिमा भरने कौन प्राणी,
1: साध की शोभा परम है समानी,
0: साध के संग गोचर मिले,
1: साध के संग सदा पुर फुले,
0: साध के संग आवे बस पंचा,
1: साध संग मतरस पंचा,
0: साध संग होए सब की रेन,
1: साध के संग मनोहर बैन,
0: साध के संग न कथू तावे,
1: साध संग सित मन पावे,
0: साध के संग माया ते पिन,
1: साध संग नानक प्रासो परसान,
0: साध संग दुश्मन सब मीत,
1: साधु के संग अपनीत,
0: साध संग किस्यो नहीं बैर,
1: साध के संग न बीगा पैर,
0: साध के संग ना ही को मंदा,
1: साध संग जाने परमानंदा,
0: साध के संग ना ही होता,
1: साध के संग तुझे सब आप,
0: आप ही जाने साध बढ़ाई,
1: नानक साध प्रभु न्याई,
0: साध के संग न कब हुतावे,
1: साध के संग सदा सुपावे,
0: साध संग बस गोचर लहे,
1: साधु के संग अजय सहे,
0: साध के संग बसे थान ऊंचे,
1: साधु के संग महल पहुंचे,
0: साध के संग दृढ़ सब तरन,
1: साध के संग केवल पार ब्रह्म,
0: साध के संग पाए नाम निधान,
1: नानक साधु के कुर्बान,
0: साध के संग सब कुल उधार,
1: साध संग साधन मीत कुटुंब निस्तार,
0: साधु के संग सो तन पावे,
1: तन ते सब को बरसावे,
0: साध संग धर्म राय करे सेवा,
1: साध के संग सुबह दोष देवा,
0: साधु के संग पाप लायन,
1: साध संग अमृत गुण गायन,
0: साध के संग सर्व थान गम,
1: नानक साध के संग सफल जनम,
0: साध के संग नहीं कछ काल,
1: दर्शन पेट तो होत निहाल,
0: साध के संग कलुखत हरे,
1: साध के संग नाक पर हरे,
0: साध के संग यहाँ सहेला,
1: साध संग विश्रह तमेला,
0: जो इच्छा सोई फल पावे,
1: साध के संग न बैठा जावे,
0: पार ब्रह्म साध रिद बसे,
1: नानक उदरे साध सुन रसे,
0: साध के संग सुनो हर नाव,
1: साध संग हर के गुण गाओ,
0: साध के संग न मन ते बिसरे,
1: साध सर्प निस्तरे,
0: साध के संग लगे प्रभ मीठा,
1: साधु के संग कट मीठा,
0: साध संग पे आज्ञा करी,
1: साध संगत पे ही हमारी,
0: साध के संग मिटे सब रोग,
1: नानक साध पेटे संजोग,
0: साध की महिमा वेद न जाने,
1: जेता सुने ते तब ख्यान है,
0: साध की उपमा ते हो गुण ते दूर,
1: साध की उपमा रही भरपूर,
0: साध की शोभा का ना ही अंत,
1: साध की शोभा सदा बेअंत,
0: साध की शोभा ऊंचते ऊंची,
1: साध की शोभा मूंछते मूंची,
0: साध की शोभा

0: मित्र सतर समान
1: राम ज्ञानी के नाही अवान
0: राम ज्ञानी ऊचते ऊंचा
1: मन अपने है सबते नीचा
0: राम ज्ञानी से धन पे
1: नानक दिन प्रभाव करे
0: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना
1: आत्म रस ज्ञानी चीना
0: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मैया
1: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पिया
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
1: ब्रह्म ज्ञानी की देश अमृतवासी।

0: ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा
0: ब्रह्म ज्ञानी के होए सोफला
1: ब्रह्म ज्ञानी सफल फला
0: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार
1: नान ब्रह्म ज्ञानी जप सर संसार
0: ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग
1: ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रव संग
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार
1: ब्रह्म

0: एक संहिता
1: ब्रह्म ज्ञानी क्या हुए अचिंत
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाप
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ पागी पाइये
0: ब्रह्म ज्ञानी को भगवान जाइये
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर
0: नान ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है
0: ब्रह्म ज्ञानी के सम्मान माहे
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना गाय अदाख्य
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
1: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने
2: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी सजीव नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुकत जुगत जी का दाता
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता।

0: मंत्र सर्व को ज्ञान जपे तिस की गत होए
1: जन को
0: कर कृपा अंतर उतारे
1: प्रेम पात्र को तारे
0: सर्व रोग का औखद नाम
1: कल्याण रूप मंगल गुण गाम
0: बाहू जुगत किते न पाइये तर
1: नानक स्मरे जिस लिखिया तुर कर्म
0: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
1: जिसका नाम सत राम दास
0: आत्म राम तिस नदरी आया
1: दास संतन पाए तिन पाया
0: सदा निकट निकट हर दान।

0: ऐसा स्वर्ण तैसी उस माटी,
1: ऐसा अमृत ऐसी भी खाटी,
0: ऐसा मान तैसा विमान,
1: ऐसा रंग तैसा राजान,
0: जो बरताए साई जुगत,
1: नानको पुर के ये जीवन मोहत,
0: पार ब्रह्म के सगले ठाओ,
1: जिसका राखे तैसा ते नाओ,
0: आपे करन करावन जोग,
1: प्रपावे सोई फन होग,
0: पसर्यो आप होए अंत तरंग,
1: लगे न जाहे पार

0: किन्नर पिसाच
1: एक और पूत परे सुकर मिर्गाच
0: चलते नेरा सबूते दूर
1: नान का पाले पतरिया पर पूर
0: एक कोट पताल के वासी
1: एक और नरक स्वर्गन वासी
0: एक कोट जन में दीवे मरे
1: एक और भोजनी फरे
0: एक कोट बैठ थी खाए
1: एक कोट काले थक पाहे
0: एक कोट किए तनवंत
1: एक कोट माया में चिंत
0: जय जय पाना तै तै राखे
1: नानक सब किस प्राप्त के हाथे।

0: संत का दुखी सदा पवित्र,
1: संत का दुखी किसी का नहीं मित,
0: संत के दुखी को दान लागे,
1: संत के दुखी को सब त्याग,
0: संत का दुखी महा अहंकारी,
1: संत का दुखी सदा बेकारी,
0: संत का दुखी जन्म में मरे,
1: संत की दुखना सुखते अटरे,
0: संत के दुखी को नहीं ठाओ,
1: नाम संत पावे ता ले मिलाए,
0: संत का दुखी अध बीज ते टूटे,
1: संत का दुखी किते काज न पहुंचे,
0: संत के दुखी को उद्यान परमाइये,
1: संत का दुखी उजड़ पाए,
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा,
1: यो सास बिना मेरते की लोथा,
0: संत के दुखी की जड़ किछ नाही,
1: आपन बीजा पे ही खाहे,
0: संत के दुखी को अबर न रखन हार,
1: नानक संत पावे ता ले ओवार,
0: संत का दुखी यो बिल लाए,
2: यो जाल भीवन मछली तड़ पड़ाए,
0: संत का दुखी भूखा नहीं राजे,
1: यो पाप किंत नहीं त्रापे,
0: संत का दुखी छुटे अकेला,
1: यो बाढ़ तिल खेत माहे दोहेला,
0: संत का दुखी धर्म ते रहत,
1: संत का दुखी सत मिथ्या
0: संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए,
1: संत के दुखी को दरगे मिले सजाए,
0: संत का दुखी सदा सहकाये,
1: संत का दुखी ना मरे ना जिवाये,
0: संत के दुखी की पुजे ना आशा,
1: संत का दुखी चले निराशा,
0: संत के दुख न दृष्टे कोए,
1: जैसा पावे तैसा कोई होए,
0: बया कीर्तन मिटे कोए,
1: नानक जाने सच्चा सोए,
0: सब कर तिसके ओ करने हार,
1: सदा इसको नमस्कार,
0: प्रभु की उस्तत करो दिन रात,
1: आवो सास ग्रास,
0: सब कछ वर्ते तिसका किया,
1: जैसा करे तैसा को थिया,
0: अपना खेल आप करने हार।

0: जिसकी जानो तृष्णा बुझे।
1: सात संग हर हर जस कहत,
0: सर्व रोते ओ हर जन रहत।
1: मन दिन कीर्तन केवल बख्यान,
0: करे समय सोई निर्वाण।
1: एक ऊपर जिस जन की आशा,
0: जिसकी कटिए जम की भाषा।
1: हर ब्रह्म की जिस मन भूख,
0: नानक।

0: अनेक सोजन सदा आरोग
1: यो मंदर कौथा में थमन
0: यो गुर का शब्द मन समन
1: यो पखान नाभ चढ़ता रे
0: प्राणी गुर चरण लगते सरे
1: ज्यो अंधकार दीपक प्रगास
0: गुर दर्शन दे मन होए बेगास
1: ज्यो महा उद्यान में मार्ग पावे
0: ज्यो साधु सम्मिल जो प्रटावे
1: इन संतन की वंशो तूर
0: नान की हलोचा पूर
1: मन मूरख कहे बिल लाइये
0: पूर्व लिखे का लेंगे पाइये
1: दुख सुख प्रभ देवन हार
0: अगर त्याग तो तिसे चितार
1: जो कछ करे सोई सुख मान
0: पूरा काहे फिरे अजान
1: कौन बसता ही तेरे संग
0: लाख रे और रस लोभी पतंग
1: राम नाम जप हृदय माहे
0: नानक पासे टीका जाव है
1: जिस वखर को लैन तू आया
0: राम नाम संतन कर पाया
1: तज अभिमान लियो मन मोल
0: राम नाम हृदय में तोल
1: लाद खेव संते संग ताल
0: अबर त्याग विख्या जंजाल
1: धन धन कहे सब कोए
0: मुख उजलहा दगे सोए
1: यो व्यापार बिरला व्यापार
0: नानक ताके सत बलिहारे
1: चरण साध के तोए तोए पियो
0: अर्ब साध को अपना जियो
1: साध की तूर करो स्नान
0: साध ऊपर जाइए कुर्बान
1: साध सेवा बड़ पागी पाइये
0: साध संघर कीर्तन गाइये
1: अनेक विघ्न ते साधु राखे
0: हर गुण गाए अमृत चाखे
1: ओट गही संत

0: ब्रह्म
1: एक आप नहीं कछु परम
0: ज्ञान पलै न जाइए
1: नानक ऐसा गुरबड़ पागे पाइए
0: सफल दर्शन पेखत पुनीत
1: चंगत निर्मल
0: संग राम गुण रवे
1: पार ब्रह्म की दरगे गवे
0: सुनकर बचन कर्ण अगाने
1: मन संतोख आत्म पति आने
0: पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र
1: अमर दृष्टि पेखे हुए संत
0: गुण बेअंत

0: तब वैर क्रोध के संग कमात
1: जब इसका वरण चिन्ह न जापत
0: तब हर्ष शोको किसे व्याप्त
1: जब अपन आप पार ब्रह्म
0: तब मोह कहा किसो बत परम
1: अपन खेल आप भरतीजा
0: नाने का नेहा न दूजा
1: जब होवत प्रभु केवल तनी
0: तब मन मुझको

0: तब चित्र गुप्त के पूछत लेखा
1: नाथ नरंजन गोचर गादे
0: अब कौन छुटे कौन बंधन बादे
1: अपन आप आप ही चर्चा
0: नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा
1: निर्मल पुरख पुरख पत होता
0: बिन मल

सहज मणस पत फुल फल भावर वसै पैखंड नानक तरवर एक है एको फुल पिरंग पौड़ी जो जन लूजै मने स्यों से पू सूरे प्रधाना हर सेती सदा मिल रहे जिन आत्म जिन आप पछाना ज्ञानिया काए मत।